0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
1: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Sounding good throughout the night. With the biggest soothers. It's your Leica Radio.

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

तिस दी वड़ियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस।

जोर जोर ना जीवन मरण नहि जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पक

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Like a radio.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे

0: लूटे कोई मन का नगर फ्रॉम अदर मूवी अभिमान इन द वोकल्स ऑफ मनोरदास एंड लता मंगेशकर. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर, सो स्टे ट्यून्ड.
1: Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.

0: This is Leica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.

0: चलिया।
1: जी आपके सपनों की रानी के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ऋतु शर्मा जरूर स्टूडियो में आ चुकी हूँ आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। और आप सबको बता दें कि ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड, और जहाँ कहीं भी हमारी आवाज पहुँच रही है सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और आपको बता दें आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज हमारा लाइका गोल्ड पूरे 5 साल का हो गया है। अभी छोटा है, नन्ना मुन्ना है, लेकिन आपका बहुत सारा प्यार मिला है और इन 5 सालों में हमने काफी तरक्की की है, बहुत सारा प्यार बटोरा है, बहुत सारे साथियों को जोड़ा है, अपने परिवार को बढ़ाया है, और इसकी हमें बहुत खुशी है। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे आप सब प्यारे प्यारे लिसनर्स को, जो इतने प्यार के साथ लाइका गोल्ड को इतना प्यार देते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आज लाइका गोल्ड 5 साल का हुआ है। तो आज प्रोग्राम में ऐसे ही मस्ती भरे गाने सुनवाती रहूंगी, और साथ ही साथ गुड न्यूज भी है मेरे पास आपको देने के लिए, और वो ये है कि आज शो में एक नहीं दो दो कॉम्पिटिशन है। जी हाँ, दो दो, सही सुना आपने। और वो क्या है और उसमें आपको क्या मिल सकता है, ये जानने के लिए तो आपको मेरा शो कान लगा के सुनना होगा, कहीं कुछ मिस ना कर दे, है ना। तो बस कान लगाकर सुनते रहिए, साथ देते रहिए, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस शो में। गुड मॉर्निंग।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो 1 pound आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर याद रखिए आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai
4: Laika Radio.
5: Kyunki saans bhi kabhi.
6: This part of the show is sponsored by Kyunki Saans Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination Kanish Idols अब Available है सभी Falcon Stores पर। ओनम संध्या के लिए Pre-Bookings भी शुरू हो चुकी हैं। Falcon Snacks 300 grams की Full Range सिर्फ £1.99 each, Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ £13.49, Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99, Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96, S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 piece से शुरू, और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99।
9: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
10: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम? लुक नो फर्दर देन सिटी बॉन्ड ट्रैवल, योर ट्रस्टेड लोकल ट्रैवल एजेंट विद एन अस्टाउंडिंग 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रॉम वर्ल्डवाइड फ्लाइट्स टू एक्सोटिक हॉलिडे पैकेजेस, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
11: London, get ready for an unforgettable night.
12: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
11: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
13: The
12: brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
8: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
12: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
8: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
12: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
0: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
0: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
3: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
4: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
3: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danube, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Leica Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
16: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: नदीम श्रवण के म्यूजिक पर परदेस फिल्म का ये गाना आपने सुना आपके मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क से। और इस गाने को बजाने की वजह आज कुछ खास है। 1999 में आई थी ये फिल्म जिसमें काम किया था शाहरुख खान ने, और शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में लेकर आए थे इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कौन है, सुभाष घई महिमा चौधरी को, जिनका असल नाम ऋतु ही है, इतना प्यारा नाम है। लेकिन सुभाष घई जो है उन्हें तो अपनी हीरोइन का नाम एम से ही चाहिए, बदल दिया नाम और रख दिया महिमा। लेकिन महिमा भी प्यारा नाम है और इस नाम से उन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी। आज महिमा चौधरी की बर्थडे है, जी हाँ आज वो अपनी बर्थडे मना रही हैं। ये उनकी पहली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन आज महिमा चौधरी 52 ईयर्स की हो गई, 53 की हो गई आज, यस 53 ईयर्स की हुई है। 13 सितंबर 1973 बॉर्न है महिमा चौधरी। तो अगर आपकी वो फेवरेट हीरोइन है तो आपकी ओर से मैं कह देती हूँ हैप्पी बर्थडे टू महिमा चौधरी।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेयरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
0: और महिमा चौधरी तो आज अपनी बर्थडे मना ही रही हैं। इन्होंने 90s के दौर में दो तीन फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर 2000 में इनकी कुछ और फिल्में आई हैं। तो इस तरह से ज़्यादा फिल्में इन्होंने नहीं की हैं, लेकिन जो की हैं वो अच्छी हैं। उनके गाने खूबसूरत हैं और बेस्ट फिल्म तो परदेस थी जिसका गीत मैंने आपको सुनवाया। और आज हमारा लाइका गोल्ड भी 5 ईयर्स का हो गया है।
1: लाइका रेडियो।
0: तो आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं बर्थडे विश करने के लिए, तो ठीक है सभी के मैसेजेस प्रोग्राम में जल्दी जल्दी शामिल करती हूँ क्योंकि आज उनकी संख्या कुछ ज्यादा है। थैंक यू राजेश जी, हैप्पी बर्थडे आपने लिखा है गोल्ड के लिए। थैंक यू संध्या भावसर, थैंक यू अर्जुन जी, सुनीति, दिनेश सोरी जी वॉक पर जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा साथ देंगे, सो थैंक यू, मुझे और क्या चाहिए, बहुत धन्यवाद। उल्लास हमारे साथ है, मिस शेख ज्योति पटेल, मोनी परदेश का गीत आपको डेडिकेट किया, आपका फेवरेट है, यस मैं आपसे मिली थी, मैं आपका सुंदर चेहरा कैसे भूल सकती हूँ, आप मेरा साथ दे रही हैं, थैंक यू। थैंक यू शेखर आनंद जी, थैंक यू हरीश खत्री जी, तोची जी, दिव्या जी, हमारे विजय गुडूरी जी, आपने लिखा है आज का सुविचार कि अपनी पहचान शब्दों से नहीं कर्मों से बनाओ, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन कर दिखाने वाले बहुत कम। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू साथ देने के लिए, थैंक यू प्रज्ञा। सूरज जी साउथ हॉल में ड्राइव कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, नरेंद्र बागिया जी बहुत धन्यवाद। मिसेस पे के चियांग सुन रही हैं, रानी जी स्लाव में हैं, मालती जी, आंटी जी, दक्षा मिस्त्री, रोजी रजीना एंड ऑफकोर्स हमारे शब्बीर जी जो कि साउथ वेल्स जा रहे हैं, तो आपका सफर तो लंबा है, आप तो हमें सुनते ही रहेंगे, सो थैंक यू। एंड महेंद्र पटेल जी, जासू जी, रोशनी, हंसा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आई एम श्योर आप ये जो अगला गाना है ना ये जरूर लाइका गोल्ड को डेडिकेट करना चाहेंगे, हाँ मुझे लग रहा है, जरा सुनिए चाहते हैं या नहीं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जी हाँ बिल्कुल, ये गाना लाइका रेडियो लाइका गोल्ड के लिए परफेक्ट बैठता है और बहुत सारे लोगों का जीवन वाकई में इस रेडियो के कारण खुशियों से भर गया है। जिंदगी में आप आए, हो गई दुनिया हंसी, भर गया फूलों से दामन, अब कमी कोई नहीं। और हम चाहेंगे कि ये आपका साथ है हमेशा, यूं ही हमारे साथ बना रहे और हम यूं ही आपको एंटरटेन करते रहे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के प्रोग्राम में एक नहीं दो दो कॉम्पिटिशन हैं।
2: This is Leica Radio.
0: तो आप हमें ध्यान से सुनते रहिए और कॉम्पिटिशन की शुरुआत करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आंटी जी थैंक यू, गीत आपको पसंद आया। फारूक मोहम्मद आप हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका इस शो में। मृदु जी थैंक यू। विजय गुडूरी जी कहते हैं सॉन्ग बहुत ही अप्रोप्रिएट था, मैंने कहा था ना ये गाना सही बैठता है और ये आप सबकी ओर से ही था, सो थैंक यू। थैंक यू गुरुदेव गांजा, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। सपना स्वीडन में सुन रही हैं। राम राम राजकुमार जी एंड ऑफकोर्स फरजाना हमारे साथ हैं, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। और अब आपको बता दें कि अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो क्या करना है आपको।
2: अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क, दिस इज रितु शर्मा। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो Southall Travel को कॉल कीजिए अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं। दुबई के लिए आपको अच्छी डील्स मिल सकती हैं। 0208-574-8410 उनका नंबर है और Southall Travel is at all protected.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: बाजार फिल्म से था ये गाना लता जी की आवाज में, और आज आप कुछ ऐसे ही सुरीले गाने सुनेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में जोड़ी नंबर वन में। और आज की हमारी जोड़ी नंबर वन है विश्वजीत और आशा पारेख की जोड़ी। इन दोनों ने आई थिंक एक या दो फिल्मों में ही काम किया है, और उनके गीत आज मैं आपको सुनवाऊंगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जिसे कहते हैं हम क्या, जोड़ी नंबर वन।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: The gold rate is 103.4 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Back to back hits across the LIKA Radio network. LIKA Radio.
3: This part of the show is sponsored by O Hamnava Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: This December, thand ko bolo goodbye.
5: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, LIKA Radio Network.
8: The wait is finally over.
9: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
11: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
12: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji, dusra koi nahi khulega.
13: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
1: It's here. LIKA Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. LIKA Radio in Birmingham is a part of LIKA, London's number one Asian commercial radio group.
14: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
15: Same. But how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
16: Not with Simzy. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
15: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
16: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
15: Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
1: From Alum Rock to Winston Green, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk. The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio. This is Leica Radio across the Midlands.
17: Suno,
18: kaha,
17: kaha,
18: suno.

0: लीजिए, इस खूबसूरत गाने को हम डेडिकेट करते हैं हमारी मालती जी को और मानसी जी को, जो दोनों ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.
0: और ये अगला गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार।

0: Is at Ibrox for this afternoon's Scottish League Cup quarter-final clash following a row over ticket allocations and previous fan disorder. From Sky News, I'm Jenny Barsby.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: चलिए फिर मौसम की बात हो जाए और आज जैसा कि मैंने आपको बताया बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश आज होती रहेगी होने की संभावना है. लंदन में मैक्सिमम टेम्परेचर आज 23 डिग्रीज तक जाएगा. मैनचेस्टर में 21 डिग्रीज एंड मिडलैंड्स में 22 डिग्रीज के आसपास.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. ये है लाइका रेडियो.
2: रितु शर्मा. बिल्कुल सही सुना आपने, मैं रितु शर्मा ही हूँ और प्रोग्राम के सेकंड आवर में आपका स्वागत है. और आपको बता दूं इस आवर में एक कंपटीशन होगा और साथ में होगा जोड़ी नंबर वन और नेक्स्ट वाले यानी कि लास्ट आवर में भी एक कंपटीशन होगा. और इस आवर का कंपटीशन क्या है बताती हूँ आपको थोड़ी ही देर में.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma.

0: हमराही मेरे हमराही जो मेरे संग तू तो डर क्या। और ये खूबसूरत सा गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन सभी महिलाओं को जो आज हरतालिका तीज का त्योहार मना रही हैं। जी हाँ, आज हरतालिका तीज है जो बड़े ही धूमधाम से बिहार और उत्तर प्रदेश और देश के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है। और आज भी महिलाएं इस त्योहार को यहाँ पर भी मना रही हैं। तो बेसिकली हरतालिका तीज जो होता है वो भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन और अखंड सौभाग्य का पवित्र त्योहार होता है। तो जितनी भी महिलाएं आज हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं उन्हें हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां और माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ये जो त्योहार है मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं या फिर जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा रखा जाता है ताकि जो सुहागिने हैं उनके पति की लंबी उम्र हो और जो कुंवारी महिलाएं हैं उन्हें मनचाहा पति मिले। बहुत ही कठिन व्रत होता है मैंने सुना है। ये एक निर्जला व्रत होता है जिसमें महिलाएं पूरे दिन और रात बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास करती हैं। इसकी बड़ी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक जंगल में कठोर तपस्या की थी और उनकी सहेलियां उन्हें हरण करके वहां ले आई थी और इसी के चलते इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। सहेलियां मतलब आली और हरण मींस हर लेना और इसीलिए इसे हर आलिका यानी कि हरतालिका तीज का त्योहार कहा जाता है। इसमें क्या कुछ होता है आप सब जानते ही होंगे। शिव पार्वती की पूजा होती है और माता पार्वती और शंकर जी के भजन गाए जाते हैं और ये कठिन व्रत है पूरे दिन और रात निर्जला रखना। तो भाई जो भी स्त्रियां इस त्योहार को रख रही हैं हमारी ओर से आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और आप सबको याद दिला दें कि इस वाले आवर में एक कॉम्पिटिशन है और एक प्रोग्राम के लास्ट वाले आवर में और इस आवर में जो कॉम्पिटिशन है उसके बारे में अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल शुरू करती हूँ आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला और पहले गाने के बाद बताएंगे आपको आज के कॉम्पिटिशन के बारे में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Ye hai
1: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
4: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises.
8: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
11: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
13: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: Leicester, Navratri ni dhammakedar raaton maate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Leica Radio.
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
15: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
16: Diljit Dosanjh non-stop on Leica Radio Punjabi. Listen now on the Leica Radio mobile app at leicaradio.com and on Alexa.
17: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कहो ना।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
2: क्या खूबसूरत गीत है लता जी और हेमंत कुमार की आवाजों में, और हेमंत कुमार ने ही इस फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था, और ये था हमारे आज के जोड़ी नंबर वन का पहला गाना। और आज जोड़ी नंबर वन है आशा पारिक और विश्वजीत की जोड़ी।
3: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
2: तो चलिए अब समय आ गया है कि हम बात कर लें आज के इस आवर के कंपटीशन के बारे में, और ये कंपटीशन आपके लिए लेकर आए हैं लाइका रेडियो नेटवर्क विद सनातन इवेंट्स, और हम आपको देने जा रहे हैं एक पेयर ऑफ टिकट्स उस शो के जिसके बारे में बात हो रही है, दिवाली स्टोरी। और ये शो होने जा रहा है एट ओवो अरीना वैमली ऑन संडे 27th September। स्टूडेंट प्री शो होगा 5 बजे से शाम को 5:45 PM तक, और उसके बाद मेन इवेंट होगा फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। और अगर आप इस दिवाली स्टोरी शो के 2 टिकट्स जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको लिख कर भेजना है हमें दिवाली, और दिवाली के साथ साथ लिख कर भेज दीजिए अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, बिल्कुल सही सही। अगर आप विनर बनते हैं तो आपको टिकट्स ईमेल के थ्रू ही भेजे जाएंगे, और ये ईमेल आपको भेजी जाएगी AXS ऐप पर। तो पहले आपको AXXYZ वाला एक्स, AXS, S फॉर स्नेक शुगर, तो AXS ऐप डाउनलोड करना होगा, और उस ऐप पर आपको ईमेल के साथ टिकट्स भेजे जाएंगे, और वहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस भी रजिस्टर्ड कर दीजिए। और अगर आप विनर नहीं बनते हैं तो आप टिकट्स खरीद सकते हैं @diwalistory.com पर जाकर। तो जो मैंने आपसे मांगा है फटाफट कर लिख कर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। क्या सबसे पहले लिखिए दिवाली, और उसके बाद अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस। जल्दी से इस वाले आवर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन है जो इस शो को, दिवाली स्टोरी को देखने जा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में।
4: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719।
2: और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
4: Leica Radio Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles।

0: वर्षा भोसले और रफी साहब की आवाज में मेरे सनम फिल्म से था ये गाना और आप सुन रहे थे हमारा आज का जोड़ी नंबर वन। प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है, आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं और अगर आपने अभी सुनना शुरू किया है तो हम चाहेंगे कि आप भी जरूर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए और फटाफट लिखकर भेजिए दिवाली, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी, क्योंकि टिकट्स आपको ईमेल के थ्रू ही मिलेंगे। तो आप हमको हमारा नंबर पता है, फटाफट लिखकर भेजिए। इस वाले आवर के एंड में मैं बताऊंगी कि कौन बनते हैं आज के इस आवर के कंपटीशन के विनर, क्योंकि नेक्स्ट आवर में भी एक कंपटीशन है और उसकी प्राइस भी कमाल की है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि बिग बॉस तो चालू हो चुका है और आप बिग बॉस भी देख रहे होंगे, लेकिन अब आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन देख सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो स्टार। 3 दिन का जो इंटरनेशनल्स वन डे इंटरनेशनल्स चल रहे हैं, जो संडे यानी कि आज से शुरू होगा अंटिल थर्सडे 17 सितंबर तक फ्रॉम 2:50 PM। तो डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो स्टार ऐप और जियो स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
2: The Ritu Sharma Show on Leica Radio.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Leica Extra Podcast Update.
0: तो लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड है जिसका टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट राइजिंग डेप्थ्स। तो इसको होस्ट किया है खुश ने और इसे आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सुन सकते हैं।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। लाइका रेडियो।
4: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनिष आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ठोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
7: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: The wait is finally over.
11: Ab sahi sur laga rahe hain Mumtaz.
10: Mirzapur is coming to the big screen.
12: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
10: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
13: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
10: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
12: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
14: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre, Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
15: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
16: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: Diljit Dosanjh non-stop on Leica Radio Punjabi. Listen now on the Leica Radio mobile app at leicaradio.com and on Alexa.
18: Listen back to your favorite shows by logging on to leicaradio.com and selecting Midlands or the mobile app. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Cranking out the biggest hits for the capital. This is Leica.

0: कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में खुद्दार फिल्म से था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था अनु मलिक का। और प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है, थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ कि कौन बने हैं आज के इस कंपटीशन के विनर।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: तो आज 1 pound आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 103.40 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
2: Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!

0: रोज कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: लीजिए रफी साहब की आवाज में शमी कपूर पर पिक्चराइज ये गाना। जासू जी एंड विजय गुरुजी जी आपके नाम करते हैं, इसके अलावा विनोद जी आप हमारे साथ हैं, थैंक यू। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, बहुत सारे साथियों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और मेरा जीतो जा रहा है कि आप सबको विनर बना दूं, लेकिन विनर एक ही बनेगा इस आवर में और एक बनेगा दूसरे आवर में, और वो दूसरा कंपटीशन होगा, उसकी भी प्राइस बहुत अच्छी है। लेकिन इस आवर के कंपटीशन को जिसने जीता है, जो विनर बने हैं, जो जा रहे हैं दिवाली स्टोरी देखने के लिए, और ये प्रोग्राम होने जा रहा है एट ओवो अरीना फैमिली ऑन संडे 27 सितंबर, और उसके लिए आपको पहले अपने फोन में AXS ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर कीजिए, क्योंकि उसी के थ्रू आपको टिकट्स मिलेंगे। और जिन्हें टिकट्स मिलने वाले हैं उनका नाम है हरीश खत्री जी, आप बने हैं इस कंपटीशन के विनर और आप किसी एक खास के साथ दिवाली स्टोरी देखने जाने वाले हैं। और जो विनर नहीं बने हैं वो टिकट्स परचेज कर सकते हैं diwalistory.com पर जाकर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हरीश खत्री जी आपको, और प्रोग्राम का नेक्स्ट आवर भी सुनते रहिए, एक और कंपटीशन है और इसलिए आज हम थ्री वर्स गेम नहीं खेलेंगे, आपको कुछ आज जिताएंगे।
2: ये है
3: लाइका रेडियो।
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220+ destination with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
6: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Good afternoon. आइए बात करते हैं आज के मौसम की. और आज एक बार फिर से लंदन में तेज बारिश होगी. लाइट रेन होगी एक्चुअली. मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री तक रहेगा. मैनचेस्टर में 21 एंड मिडलैंड्स में 22 डिग्री के आसपास.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: Yeah. Leica Radio.
0: Ritu Sharma.
1: Yes, good afternoon. आप सुन रहे हैं The Ritu Sharma Show, आपके मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क पर. और इस आवर में आपका स्वागत है अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं. और इस आवर में मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवाती हूँ और गेम खेलते हैं. लेकिन आज कंपटीशन होगा और वो क्या होगा बताती
0: हूँ. लाइका रेडियो,
2: लाइका रेडियो,
0: लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक. दिस इज लाइका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द मिडलैंड्स ऑन DAB डिजिटल रेडियो विद अ रिफ्रेशिंग मिक्स ऑफ बॉलीवुड क्लासिक्स एंड लेटेस्ट चार्ट टॉपर्स. डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप एंड लिसन व्हेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड. The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: क्या लाइन लिखी है गाने की कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जब से ये गाना बना है तब से इस लाइन को अक्सर ही यूज किया जाता है यूं ही बातों बातों में। और कमाल का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इनफैक्ट शुरू के जो दोनों गाने थे दोनों में म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही था। पहला गीत हमने लता जी की आवाज में आपको सुनवाया एक दूजे के लिए फिल्म से, और दूसरे गाने में भी लता जी थी, फिल्म का नाम मेरा गांव मेरा देश। और लीजिए, दो गीतों के साथ लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है और मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए दूसरा घंटा शुरू हो गया। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस आवर में भी एक कॉम्पिटिशन है और इसलिए आज हम अपना 3 words गेम नहीं खेल पाएंगे। हालांकि मेरे 3 words बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन आज बताने से फायदा नहीं तो आपके कंपटीशन के आंसर्स और ये 3 words गेम के आंसर हो जाएंगे मिक्स और फिर मेरी हो जाएगी हालत खराब। तो इसलिए अगले हफ्ते तक के लिए इंतजार कीजिए 3 words गेम का। लेकिन फिलहाल कंपटीशन क्या है ये ध्यान से सुनिए। आज का जो कंपटीशन है उसे लाइका रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं हे गॉर्जियस के साथ मिलकर, यानी कि हे गॉर्जियस शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन एक बार फिर से लंदन में आ रही है और ये सब होने जा रहा है सैटरडे 19th एंड संडे 20th सितंबर एट बायरन हॉल हैरो HA35BD। और इनके जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो हैं सारी प्लीटर और एडिशनल की स्पॉन्सर्स हैं बिगिन रीग्रो एंड शाना फूड्स। फ्री एंट्री है इस इवेंट की, आप जा सकते हैं, आप सिंपली विजिट कीजिए heygorgeous.events पर और एंटर कीजिए डिस्काउंट कोड, लिखिए लाइका। इसके अलावा बहुत सारे फैंटास्टिक गिव अवेज हमारे यहाँ से दिए जा रहे हैं और अगर आप उन प्राइजेस को जीतना चाहते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजना है वर्ड गॉर्जियस, उसके बाद लिखिए अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, जो भी हमको चाहिए सब कुछ लिखकर भेज दीजिए। और आप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनिए। अगर आपका नाम इस वाले आवर के एंड में अनाउंस होता है तो आपको खुद हे गॉर्जियस एग्जीबिशन में जाना होगा अपना प्राइस कलेक्ट करने के लिए। आप दोनों दिन में से किसी भी दिन जा सकते हैं, सैटरडे 19th या फिर संडे 20th को। और अगर आप इन दोनों दिनों में नहीं जा पाए तो आपका जो प्राइस है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने जीता था और हमें प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि एग्जीबिशन ख़त्म तो प्राइज भी ख़त्म, ठीक है ना। तो ये सब आपको करना है, जल्दी से लिखकर भेज दीजिए जो भी डिटेल्स मैंने आपसे मांगी है। क्या? गॉर्जियस, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस हमें भेजिए फटाफट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719।
0: और हाँ, ये तो बता दूं कि आपको प्राइस में क्या मिलने वाला है। अगर आप इस कंपटीशन के विनर बनते हैं तो आपको मिलेगी एक लग्जरी साड़ी फ्रॉम रामब्रो स्टाइल क्राफ्टेड विथ प्रीमियम सिल्क साड़ी। मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक ब्यूटीफुल लग्जरी साड़ी मिलेगी फ्रॉम रामब्रो स्टाइल क्राफ्टेड विद प्रीमियम गाजी सिल्क। और इसकी फोटो मैं देख पा रही हूँ, आप सोशल मीडिया पर जाकर लाइका गोल्ड की सोशल मीडिया पर जाकर उस वैसी साड़ी को आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये साड़ी है और आपको ये मिल सकती है। और आपको क्या करना है जो मैंने बताया है फटाफट करके भेजिए, हो सकता है ये साड़ी आपको मिल जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनिष आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg Sir 10.99.
4: Park and Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
5: Namaskar. માર્ચ 2027માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માનો જાપાનનું અદભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
11: व्हेन इट कम्स टू हार्ट अटैक्स, यू माइट बी सरप्राइज्ड टू हियर द सिम्पटम्स डोंट ऑलवेज फील सीवियर. यू कैन एक्सपीरियंस अ स्क्वीजिंग अक्रॉस द चेस्ट. A feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
12: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
13: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: छोटी बहन फिल्म से था ये गाना आशा जी और मन्ना डे की आवाजों में। और आप जानते हैं कि मन्ना डे इस बार के हैं हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक, और कंपटीशन चल रहा है और विनर का नाम मैं बताऊंगी इस वाले शो के एंड में। लेकिन फिलहाल शुरू करने जा रही हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स का सिलसिला। सुनवाती हूँ आपको पहला गाना।
1: Like a radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गाना किशोर कुमार की आवाज और इस फिल्म में काम किया था किशोर कुमार ने और उनके साथ थी वैजयंती माला। एक हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जो 1962 में आई थी और फिल्म में किशोर कुमार हो और कॉमेडी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत गाना, मेरे जो कुछ फेवरेट गाने हैं ये गाना उनमें से एक है जिसे आज आपने सुना। और अब सुनवाती हूँ आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कंपटीशन चल रहा है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और हमारे कुछ साथियों ने हमारे इंस्टा पेज पर विजिट करके देख भी लिया है कि वो साड़ी कितनी खूबसूरत है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो आपको ये साड़ी मिल ही जाएगी, और अगर नहीं भी जीतते तो आप ये साड़ी बाय कर सकते हैं। भाई ये साड़ी आपको देने जा रहे हैं, मिलने जा रही है फ्रॉम रामरो स्टाइल, क्राफ्टेड विद प्रीमियम गाजी सिल्क, लग्जूरियस साड़ी। और वहाँ पर आप उनके स्टॉल पर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और भी आपको उन पर उनके बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। तो बिल्कुल ये साड़ी आपको मिलेगी और इस वाले आवर के एंड में ही मिलेगी, पर किसको मिलेगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सुनवाती हूँ आपको दूसरा आज का ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गाना, लेकिन उससे पहले
1: दिस इज रितु शर्मा।
0: भाई याद दिला दे कि बिग बॉस शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं कि नहीं। मैं देख रही हूँ, लेकिन मैंने अभी 2-3 एपिसोड ही देखे हैं, अभी बहुत सारा फॉलोअप करना बाकी है, इतना समय नहीं मिल रहा। लेकिन कैसा जाता है बिग बॉस इस बार का वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बिग बॉस कलर्स टीवी पर तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ये जियो स्टार पर भी दिखाया जा रहा है। सलमान खान होस्ट कर रहे हैं हम जानते हैं, 9:30 आता है कलर्स टीवी पर जियो स्टार पर, लेकिन अगर आप इसकी 24/7 फीड देखना चाहते हैं लाइव तो आप जियो स्टार पर देख सकते हैं। हर एपिसोड भी दिखाया जा रहा है वहां पर और पहली बार 24/7 लाइव फीड भी दिखाई जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको जियो स्टार लेना पड़ेगा। अवेलेबल है जियो स्टार स्काई टीवी ऐप पर, स्काई टीवी पर इसका ऐप भी अवेलेबल है और इस पर आप अपनी पसंद का बिग बॉस जब मर्जी चाहे देख सकते हैं।
1: This is Ritu Sharma.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: यसू अनारी फिल्म से था ये गाना और ये था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना जिसे आप सभी ने सुना भी और पसंद भी किया। और चलिए अब एक और गाना सुनवाऊंगी और उस गाने के बाद बताऊंगी कौन बने हैं आज के इस वाले कॉम्पिटिशन के विनर।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ हॉल ट्रैवल।
0: पर एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कर सकते हैं आप अगर दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका नंबर है 0208-574-8410 और साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: क्या काम है।
1: अमिताभ बच्चन की आवाज ने इस गाने को अमर बना दिया है और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक कमाल का। और आज भी जब केबीसी में अमिताभ बच्चन उस चेयर पर बैठते हैं और कुछ बोलते हैं और पीछे से उनके सुपरहिट गानों की चाहे एक लाइन या म्यूजिक ही चलता है तो ही दर्शक ताली बजाकर झूमने लगते हैं। ऐसा जलवा है आज भी अमिताभ बच्चन का। ये गाना आपने सुना लावारिस फिल्म से लिया था और अब समय आ गया है आपको बताने का कि कंपटीशन के विनर कौन है।
2: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: आज का जो है गॉर्जियस का कंपटीशन है उसे जीता है मोनी सोलंकी। आपने आप बनती हैं हमारे इसके कंपटीशन के विनर और ये कंपटीशन आपके लिए लाइका रेडियो एंड है गॉर्जियस लेकर आए हैं। और जो विनर बने हैं उनको बता दूं कि ये जो है गॉर्जियस शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है ये सैटरडे 19th और संडे 20th सितंबर को है एट बायरन हॉल हैरो में HA35BD ये इसका पोस्ट कोड है। और आपको वहां पर जाकर अपना प्राइस कलेक्ट करना होगा इन दोनों दिन में से किसी भी दिन। और अगर आप इन दोनों दिन में से किसी भी दिन नहीं जाते हैं तो फिर आपका प्राइस आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखिए 19th और 20th सितंबर को जाना है। और आपको जो साड़ी मिल रही है वो है फ्रॉम रामरो स्टाइल की ओर से। आप उनके स्टॉल पर जाएंगे वहां पर आपको साड़ी मिलेगी और ये साड़ी बहुत ही सुंदर है क्राफ्टेड विद प्रीमियम सिल्क। और ये साड़ी आपको फिर से बता दूं रामरो स्टाइल की ओर से मिलने वाली है। लग्जरी साड़ी है और ये है क्राफ्टेड विद प्रीमियम गाजी सिल्क। बहुत सुंदर साड़ी है मोनी आपको मिल रही है ये साड़ी। और आप जाइए वहां पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं बहुत सारी चीजें हैं आपको मजा आएगा देख कर आइए। एंड हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स चलते जा रहे हैं तो आप सुनते रहिए पार्टिसिपेट करते रहिए कभी ना कभी किसी ना किसी दिन आपका नंबर भी आ सकता है। लेकिन विनर जो हैं उनको मैं बता रही हूँ कि 19 से 20th के बीच में ही जाकर आपको अपना प्राइज लेना है ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन।
2: Like a Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो £1 देगा आज आपको 129 भारतीय रुपए 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: So Gold Rate is £103.40 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: तो लीजिए आज लाइका गोल्ड बिल्कुल 5 ईयर्स का हुआ है और आप सबका बहुत सारा प्यार आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे भी मिली हैं और गोल्ड को आपका ढेर सारा प्यार मिलता है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब आपसे बातें करते करते जाने का समय आ गया है। अगला गीत आपको लेकर चलेगा न्यूज़ तक और न्यूज़ के उस पार अनुराग देंगे आपका साथ गोल्ड पर। आनंदी होंगी आपका साथ देने के लिए आज नबीला होंगी आपका साथ देने के लिए लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर और जय होंगे लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर। लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी रवि शर्मा जी के शो में ऑन लाइका गोल्ड और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर 10 से 1। तो साथ जरूर दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जब भी समय मिले हमें सुनते रहिए। तब तक के लिए कल तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू टुमारो।
4: हेलो हेलो हेलो वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।
5: ये है
6: लाइका रेडियो
7: क्योंकि सांस भी कभी।
8: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. It's back and it's bigger.
8: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
4: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
8: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
4: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
11: Southall Travel, at all protected.
4: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: Aap Punjabi aaya!
13: Diljit Dosanjh non-stop on Leica Radio Punjabi. Listen now on the Leica Radio mobile app at leicaradio.com and on Alexa.
14: Have you noticed the way fans shout at football matches?
15: Oh, wake up!
14: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
16: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
17: Next, Anandi Shah with Weekend Bliss on Leica Radio. This is Leica Radio across the Midlands.

0: टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत था मेरी महबूबा फ्रॉम द फिल्म परदेस 1997 की फिल्म, और दूसरा गीत था महबूबा वर्ड जिसमें आता है फिल्म चांदनी से, जो कि 1989 की फिल्म थी. आज बहुत ही प्यारी सी एक हीरोइन अपना बर्थडे मना रही हैं. नाम है जिनका महिमा चौधरी, जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी शानदार एक्टिंग से भी दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई. महिमा चौधरी का जन्म हुआ था एज रितु चौधरी, दार्जिलिंग में पैदा हुई थी 13th सितंबर 1973 में, एंड शी वन द मिस दार्जिलिंग टाइटल इन लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट. बॉलीवुड में कदम रखने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर शुरू किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिमा चौधरी ने बॉलीवुड में कैसे एंट्री ली, उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे एक एडवर्टीजमेंट ने उन्हें बॉलीवुड तक पहुँचाया? 90s के दौर में महिमा कई टेलीविजन कमर्शल्स में दिखाई दी. इनमें से एक बहुत पॉपुलर था पेप्सी का कमर्शल, जिसमें वो आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ नजर आई थी. और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस एंड स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म मेकर सुभाष घई का ध्यान अपनी ओर खींचा. सुभाष घई उस समय एक नई एक्ट्रेस की तलाश में थे, उनकी अपकमिंग फिल्म में उसे लॉन्च करने की तैयारी में थे, और उन्होंने महिमा चौधरी को अपनी फिल्म में लिया जिसका नाम था परदेस, जिसका गीत आपने सुना. और लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह से रितु चौधरी बन गई महिमा चौधरी, और रितु को ये नाम दिया था सुभाष घई साहब ने ही, तो ये उनका स्क्रीन नेम है. और भी बातें होंगी नेक्स्ट आवर में, कुछ और बातें. और तीनों आवर के पहले गाने जो हैं वो महिमा चौधरी के नाम होंगे, और उन्हें विश करते हुए हैप्पी बर्थडे. इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे तो हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई हो. आपकी जिंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हजार बार आए, खुशियां मनाते रहे, खुशियां बांटते रहे, खुशियों को बटोरते रहे. चलिए आगे बढ़ते.
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और आइए आपको बता दें कि अगर आप SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पैसे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आप सीधा ब्रांच में जा सकते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या SBI योनो मोबाइल ऐप जो है आपने डाउनलोड किया है तो उसके जरिए भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर. एंड योर £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टूडे 128 rupees and 90 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनिष आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू. और हर्ज़मैन बटर 20 kg सिर्फ 10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
1: वन परफॉर्मर
4: टीवी के सामने प्रोसम से कहले क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी
2: है. काउंटलेस पर्सनालिटीज
5: जिंदगी बर्बाद हो गई है.
1: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट
6: मैंने फंक्शन रखा हुआ है.
2: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026
1: 29th अक्टूबर ओवर अरेना वेम्बली लंदन 31st अक्टूबर मैटियोली अरेना लेस्टर.
2: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी. From Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
8: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk or call 07956154846.
9: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड पोटैटो चिप्स नाउ.
12: आई हैव बीन से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
13: Back and it's bigger.
14: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers,
13: on Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
14: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
13: Exclusive charity partner Go Dharmic.
15: From Dudley to Handworth Wood, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. From West Brom to Sparkhill, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
16: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
15: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: तुझे मेरी महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, क्या क्लासिक हिट गाना है। महबूब महबूबा, ये है प्रोग्राम के इस आवर का थीम और मुझे उम्मीद है कि ये सारे गाने आपको पसंद आ रहे हैं। और ये थी मोहम्मद रफी साहब की आवाज, नौशाद साहब का संगीत।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: डेफिनेटली टेस्टी सॉन्ग ऑफ द आवर था और मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद भी किया होगा. फिल्म धर्मवीर से चुना हुआ ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़. और ये गाने इतने अच्छे लगते हैं, 80s के हों, 70s के, 60s के गाने मुझे बहुत पसंद हैं, इवन 2000 के गाने भी पसंद हैं. लेकिन ये लाइका गोल्ड है, आप जानते हैं यहाँ पर 2000 के गाने नहीं होते. पर 90s के गाने मुझे बेहद पसंद है, 60s, 70s, 80s सभी. आपको क्या पसंद है ज़्यादा, 50s के गाने या 60s के, 70s के? इस वक्त हम महबूबा पर सभी गीत सुन रहे हैं. महबूब या महबूबा वर्ड है. आपको कोई गाना खास याद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं. आपको मालूम है किस नंबर पे मुझे आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजना है.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स. मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम. ग्रैब योर कोको बोल टुडे. सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स.

0: अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग मुकेश जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत मैंने हिमालय की गोद से चुना था और इसमें संगीत था कल्याण जी आनंद जी का. यस, मुकेश जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत चांद सी महबूबा बहुत पॉपुलर हुआ था. और जब कोई किसी लड़की को बहुत प्यार करता है ना तो ये गीत शायद अब भी गाते होंगे, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा बहुत होता था. क्या आपने भी गाया था अपनी महबूबा के लिए ये गीत, तो ज़रूर बता दीजिएगा.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
0: और भैया प्रोग्राम का अगला गीत जो आ रहा है कमर्शियल ब्रेक के बाद वो आपको पहुंचा देगा न्यूज तक. न्यूज के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ, मेरा साथ देते रहिएगा.
1: सरिता समरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: प्रोग्राम के सेकंड आवर में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम कर रही है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत चुना था मैंने फ्रॉम द फिल्म दिल क्या करे, जिसमें काजोल भी थी, अजय देवगन थे एंड साथ में थी कौन, महिमा चौधरी। सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और 1997 की फिल्म परदेश में महिमा ने गंगा का किरदार निभाया था और उनके साथ लीड रोल में थे बॉलीवुड के सुपर हीरो कौन, शाहरुख खान। और एक न्यू कमर एक्ट्रेस शाहरुख खान के साथ जिन्होंने काम किया तो मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट। महिमा ने अपनी पहली फिल्म से ये साबित कर दिया था कि वो एक खूबसूरत चेहरा ही नहीं, उनकी सिंप्लिसिटी, इनोसेंस एंड शानदार एक्टिंग ने ऑडियंस का दिल जीता था। परदेश एक बड़ी सक्सेस बनी और महिमा को उनकी डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला था। और बस यहीं से शुरू हुआ महिमा चौधरी का असली बॉलीवुड सफर। एक लड़की जिसने मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर टेलीविजन कमर्शियल्स में दिखाई दी और आखिरकार बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर एक लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाई। फिल्म दाग द फायर में भी उनका काम बहुत खूबसूरत था। नेक्स्ट आवर में उस फिल्म का गीत जरूर शामिल करूंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बता दूं कि दूसरा गीत मैंने चुना दिल तुझे दिया फिल्म से और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। लता जी की आवाज में वादा ना तोड़।
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India ke zariye agar aap paise transfer karana chahte to kaam bahut aasan hai. You can walk into the branch, you can go online or SBI UK यूनो ऐप अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसके जरिए घर बैठे ही पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आज आपका 1 British sterling pound कैन गेट यू 128 rupees and 90 paisa। टर्म्स एंड कंडीशंस।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
6: Also explore 2026 cruises.
5: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: London, get ready for an unforgettable night.
9: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
9: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
9: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
10: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Laika Radio.
2: चलिए ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर लें. संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदेसानी आ रहे हैं, जे एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद संजय कपूर, आफ्ताब शिवदेसानी, सिंगर्स अमन त्रिखा एंड मयूरी पटालिया. 27 सितंबर को लेस्टर में होंगे, डी मॉन्ट फोर्ट हॉल में, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Laika Radio.
3: Tu bhi aaja ke aa gayi rut.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: चलिए एक बार फिर से आपको बता दें करेंसी का रेट क्या चल रहा है. अगर आप LemFi के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो इंडियन रुपीस आपको मिलेंगे एक पाउंड के बदले 129.30, पाकिस्तानी रुपीस 375.38, अफगानी 87.57, बांग्लादेशी टका 166.47, श्रीलंकन रुपी 444.46 एंड यूएस डॉलर्स 1.30.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में क्या है ये भी जान ले. 103 pounds and 40 pence पर.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: बैक टू बैक दो गाने सुने आपने। ये प्रोग्राम का लास्ट एंड द फाइनल आवर है। पहला गीत मैंने चुना था महिमा चौधरी की ही फिल्म से, फिल्म का नाम था दाग द फायर, 1999 की फिल्म थी एंड बहुत प्यारा काम किया था इस फिल्म में भी महिमा चौधरी ने। आज अपना बर्थडे मना रही है, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक लड़की जिसने मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर टेलीविजन कमर्शियल्स में दिखाई दी और आखिरकार बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर एक लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने दिल क्या करे, धड़कन, कुरुक्षेत्र, लज्जा, बागवान जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, उनकी जिंदगी में कई मुश्किल दौर भी आए हैं, फिर भी उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया और अपने करियर में आगे बढ़ती रही। महिमा चौधरी की कहानी मुझे ये सिखाती है कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज कभी भी और कहीं से भी आ सकती हैं। जी हाँ, मुझे ही नहीं आपको भी सिखाती है, सबको ये सिखाती है कि अपॉर्चुनिटीज कहीं से भी आ सकती हैं। एक एड से शुरुआत की, पहचान हुई और सुभाष घई तक पहुंचाया। सुभाष घई की फिल्म परदेश ने उन्हें बॉलीवुड के पर्दे पर पहुंचा दिया और इस तरह रितु चौधरी बनी महिमा चौधरी। कभी कभी जिंदगी का एक छोटा सा मौका आपकी पूरी कहानी बदल दे है। तो ये गीत था फ्रॉम द फिल्म दाग द फायर, इसमें चंद्रचूर सिंह थे हीरो और संजय दत्त का भी बहुत अच्छा काम था। और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म दर्द दर्द, 1981 की फिल्म थी। इसमें किसने काम किया था, राजेश खन्ना एंड हेमा मालिनी थे, पूनम ढिल्लन भी थी इस फिल्म का हिस्सा, अमरीश संगर ने इसे डायरेक्ट किया था और खयाम साहब का संगीत प्यार का दर्द है। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ये गाना और उम्मीद करती हूँ आपने भी जरूर पसंद किया।
1: Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बहुत आसान है। You can exchange the money in branch, online और SBI Yono mobile app download किया हुआ है तो उसके जरिए घर बैठे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। Terms and conditions apply. आज आपको 1 British sterling pound can get you up to 128 rupees and 90 paisas. Terms and conditions.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Summerwall on Leica Radio. Leica Radio.
2: Tum dena saath mera. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और Herdsman Butter Ghee 20 kg sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Sale Leicester LE54UN.
5: Namaskar. માર્ચ 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fan. Radio partner, Laika Radio.
11: It's back and it's bigger.
12: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
11: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
12: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
11: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
13: You know how fans shout at football matches?
14: Oh, wake up!
13: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
15: Like a goal. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट मन्ना डे जी। मन्ना डे जी का ही गाया हुआ ये गाना बहुत खूबसूरत है और उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर पसंद किया। फिल्म का नाम था अनुभव, जो 1971 में आई थी। एंड बहुत मीठा सा गीत है, मीनिंगफुल गाना है, ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर पसंद आया होगा।
1: Brought to you by Derry Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Leica Radio. भी आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस शुरू हो चुका है, होस्टेड बाय सलमान खान. दिस इज़ द 20th सीजन एंड हर रोज आप देख सकते हैं 9:30 PM पर कलर्स टीवी पर एंड ऑल्सो ऑन जियो हॉटस्टार. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलोंग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप on Sky TV.
0: Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बम्बई का बाबू एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए और ये गीत जादू जादू कर जाता है। आज हमने महिमा चौधरी का बर्थडे मनाया। इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे एज वेल तो हमारी तरफ से बर्थडे की शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आएँ, हज़ार बार आएँ, खुशियाँ मनाते रहें, खुशियों को बाँटते रहें एंड खुशियाँ बटोरते रहें। आज लारा अपना बर्थडे मना रही है, आर्यन अपना बर्थडे मना रहे हैं, दोनों को बहुत बहुत बधाई। मेरे वो साथी जो पूरे 3 घंटे तक मेरे साथ जुड़े रहे और मेरा साथ देते रहे, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इसी तरह से आप लाइका गोल्ड सुनते रहे हैं, लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। लेस्टर में बैठे हैं, बर्मिंगम में बैठे हैं, मैनचेस्टर में बैठे हैं, मिडलैंड्स में कहीं भी हैं, लंदन के किसी भी इलाके में बैठे हैं, उम्मीद करती हूँ लाउड एंड क्लियर ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा। आपका साथ बहुत मायने रखता है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है ये जानकर कि कौन से कान कहाँ बैठे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। अपना साथ इसी तरह से हमारे साथ बनाए रहें, अपना प्यार इसी तरह से हम तक पहुंचाते रहें। ये बता दूं मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह जो विंटेज गोल्ड प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश करते हैं एवरी सैटरडे एंड संडे, एंड देन उसके बाद आप हमारी ओवरनाइट सर्विस में बैक टू बैक म्यूजिक सुन पाते हैं। फिर मंडे सिलसिला शुरू हो जाएगा, काजल आएंगे इन द मॉर्निंग, काजल के बाद फिर रवि शर्मा जी, देन बाली ब्रह्मभट एंड देन आएंगे सैंडी शाह और उसके बाद अनीसा नासिर। इसी तरह से ये सिलसिला वीकडेज में चलता है और वीकेंड पे आप सुन पाते हैं दीप राजा को इन द ब्रेकफास्ट शो। दीप राजा के बाद आती हैं रितु शर्मा, फिर अनुराग और फिर सरिता की बारी आ जाती है, तो फिर आपसे मिलने के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगी अगर जिंदगी ने साथ दिया। पर आप भी वादा कीजिए आप हमारे साथ रहेंगे, इसी तरह से प्यार करते रहेंगे और अपने होने का एहसास भी दिलाते रहेंगे। चलिए बस यही मैं हमेशा कहती हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्यार से ज़िंदगी को बिताएं। जो भी हमारे पास पल हैं वो अच्छी तरह से बीतें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब।
1: ये है लाइका रेडियो।
2: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है, एवरी डे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
7: Dil ne ye kaha hai dil se bol chudiya.
6: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: We're finally going home for the wedding.
9: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
9: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
9: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
10: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
11: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone. 11, 11.
12: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place. 11.
12: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
14: Danu 11-11. Danu Properties.
15: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
16: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
17: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
19: Okay, help's on its way.
20: Grab my hand!
21: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
22: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
23: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
24: Four beers, please, garçon!
23: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
25: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
26: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
25: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Leica.

0: Leica Radio. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208890880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
3: It's back and it's bigger.
0: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
3: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
0: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
3: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
6: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
7: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
8: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Hollywood romantic hits throughout the night. This is The Love Sound.

0: London. Get ready for an unforgettable night.
1: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
0: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
1: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
0: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
0: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
3: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410. साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपर.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Big Boss mein is baar milega pardaan aur extra jeevan daan. Tab has tu meri jaan.
9: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house exclusively on Jio Hotstar.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
10: From Sutton Coldfield to Handsworth, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the

0: Pembrokeshire Radio Network. Across London, Manchester and the Midlands.
1: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place.
2: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410
6: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड
7: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: From Helzowen to Harborne. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands, easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.